आयो शर्मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है। वो धाम वासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धाम वासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरि पार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें। फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए, वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास,
हेतु की कृपालु श्री हरि उस पे रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तद्भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले तो उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य, कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला, बड़ा कठिन है। आहार संयम वातावरण ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं। धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके। एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी, कहीं भी कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए,
भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं, ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है, कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं अधर्म किसे कहते हैं, पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहता, कहते तो हमारा आज ये सौभाग्य न होता, कहां मैं कुलटागामी अपवित्र और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला, आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा, जैसा सोचना है वैसा तुम अभी अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा, जैसा जीवन तुम चाहते हो सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा, और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें, शांति सुख आनंद, तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा, अब लो निशानी अब नान सही हो, जितनी श्वास है अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा, ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती, क्या हो गया, निश्चय हो गया, हमारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज से नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे, महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया,
बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। ये क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से, आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अब व्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकंड सार्थक करो, कोई भी सेकंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजें ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, ये चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन, एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे, हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया, अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना, ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना जामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का, नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, और दासोहम में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते, वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सद्यो विमुक्त हो, देखो ना एक नाम ने सद्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। ये कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है।
बिना संग के नाम में ना परिचय होगा ना प्रीति होगी, भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रु नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल से फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करोहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है, राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो, प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा, एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके, सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में। कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न हैं, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को न पढ़ने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान की ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा है जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मार घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे, ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर, समझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो, जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो। मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझनी। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर
नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तो कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्त

अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जिस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं? या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत बेटर है उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है।
2: सक्सेस इज नॉट
1: हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में, वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। ऐसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहां पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मींस कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है, ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है वो सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, तो उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में, एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है, ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं,
3: छोटा छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं,
1: है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है और कंफर्ट की वैल्यू है, पर उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है, खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं है ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से, मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट, जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है वो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है, जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके इंप्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी, जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है, या ये कह लो कि ये एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो मर सकता है इंसान, तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा, तो जहां डर होता है जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं कोई डर नहीं है, पर जितना ज्यादा आपको खुशी मिल रही होती है उस इंसान के साथ में, ये सोच के तो आप खुश हो रहे हो ना कि हाँ हो गया, मतलब यही, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन, तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा, और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना, तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं, अगले दिन मैं घर में आया मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं मैं दुखी हूं, तो जिसको आप खुशी कह रहे हो वहां पे तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है, और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज हो करके, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशन में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, एडिक्ट हो जाते हैं हम, दोज आर मोर लाइक एस्केप्स, जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से। मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स हैं। इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ। एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई, या उससे बोर हो गए, या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं, ये क्या किया है तूने। होता है नहीं होता है? हाँ। और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या, जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है। जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है, पता है आप लोगों को आइडिया है? हाँ, आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है। तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए, नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दू बनती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा आ हा हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया, जैसे चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है। जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो, क्यों, क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है,
4: लोगों के कमेंट्स,
1: या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया। होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं ना, फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ठीक था मैं तो। तो सुंदरता कहां है, बाहर है, अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। एब्स है, ये है, वो है, फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। यही दुनिया की कहानी है, दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे तो हो नहीं आप लोग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके, कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में। सब कुछ रहता है रहे, जाता है चला जाए। ये नहीं कर सकते, इसको डर में जी रहे हो ना। आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती। ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते है? कुछ भी कर लो, वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आरसेल्व्स, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ, जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान हैं। आप कभी पहाड़ों पे अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां जाकर के देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है, वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, ये सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूं, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ, बाढ़ में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेंगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसका दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में चार पांच लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब इस तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को मैं एज इट इज देख रहे हैं, सोच रहे हो ना ये वो ये। एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ, 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं सुंदर के, बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है। वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में एक सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है, वो फेलियर में एक सेकंड का फर्क है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में एक सेकंड का फर्क है, ठीक है ना? जैसे ही वो बदला, थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के। मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े, थॉट से किसको जोड़े? कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा, खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है। वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है। खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा। हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी

0: आप यहाँ पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है। देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है। जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते। पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो। खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है। करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश होगे बिना करे? सब कुछ अपने आप होता रहा है, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? We don't need thought to be happy. ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा। अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो? सुबह से रात तक वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर रहे। क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो, ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो और पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई? कुछ भी हो जाए, ब्रेथ तो फिर भी चलेगी। और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं, मेरे होने के ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं, इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो, मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कब ये देख सकते हो कि अगर आप अपने घर की छत पे लेटे हुए हो और ऊपर बादलों की तरफ देख रहे हो, तो कब इस सच को आप एज इट इज देख सकते हो और समझ सकते हो कि सब कुछ मुझ में है?
1: थॉटलेस माइंड इज की ऑफ हैप्पीनेस।
0: थॉटलेस माइंड इज की फॉर हैप्पीनेस, बट व्हाट इज थॉटलेस माइंड? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो,

0: बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर. द थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है. बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके. उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे. दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे. दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट. आने दो, दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली. दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे? बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए. थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा. क्या घोचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो. थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते. थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं. ये डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं. आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है. अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है. मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं. आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो. बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं. अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस. नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के. आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम. आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा. काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है. गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गानों को सुनने को तैयार नहीं है आपका. करो क्या करोगे, हो गए ना दुखी. आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है. हम क्या गलती कर रहे हैं? अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है, यही कर रहे हो आप गलतियां. क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं. तो डर लगता है ना, मेरे से चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा. गुलाम नहीं हो आप चीजों के. तो सुप्रीम इंटेलिजेंस कैसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है. तो बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है. खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो खेतों में चले जाओ, जाके बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, गाना खिला देगा, हाँ डीजे खिला दूंगा, क्या है. मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए. मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए. दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए. आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट, एज मच एज आई कैन. At the same time, I have the capacity to live without money. Fearless हो गए ना? ये दो extreme होती हैं. हमारी problem क्या है? ज्यादातर लोग इस दुनिया में problem क्या है? अपने potential पे काम नहीं करते, अपने आप को capable बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर zero से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है. पैसा कमाना मेरे लिए खेल है. ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है. रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है. बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी आंखों में डर नजर आता है. तो पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए. तो कैसा अपने आप को बना दो एक तरफ से, वो कैसे बनेगा? थॉट से बनेगा. और कैसे बनेगा? मतलब खुश रहेंगे तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी. थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया वो किया. वो किस लिए कर रहे हो आप? अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया में बहुत तरह के लोग, देख लिए हर तरह के, देख लिए वो भी, देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो कहां है इसको ध्यान से समझना, ये समझने में है कि जो थॉट्स है इसमें कुछ नहीं पड़ा है, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थॉट जरूरी है, आपका समझदार होना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे। बस इतनी सी शुरुआत है, इतना अगर हमको समझ आ जाए तो क्या होगा, दिन में मानो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपने काम किया उस वक्त तो पूरी तरह से थॉट को यूज किया अपने आप को कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया, थॉट को छोड़ छोड़ के बैठे हुए हो। थॉट की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप देखोगे किसी को भी तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई, और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुनश्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई देखिए, मॉर्निंग एक्सप्रेस में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज वेदर की। मौसम का क्या हाल है अपने शहर में ये जान लेता है। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 43 डिग्री जाने वाला है। इसके अलावा अगर मिनिमम की बात की जाए 31 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 24 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी 25%, यानी कि दिन अच्छा खासा गर्मी भरा रहने वाला है। सनी सनी आज का पूरा दिन है, कोई भी बारिश के आसार नहीं है। सो इस गर्मी से अगर बचना है ना, तो हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा और जितना हो सके ना पानी के साथ में सीजन फ्रूट्स भी खाइएगा, सो दैट की पानी की कमी ना फूड से भी पूरी हो जाए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।

0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
2: इरशाद,
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मनु दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डे लेकर आई हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ, हाई हील्स की अगर बात की जाए ना, तो हाई हील्स से फैशन नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल हाई हील्स डे, यानी कि एक फन डे डेडिकेटेड टू स्टाइल, कॉन्फिडेंस और फैशन। अब बात हाई हील्स की जाए तो आपको पता है हाई हील्स क्यों इन्वेंट की गई थी। हाई हील्स का कनेक्शन ओरिजिनली वुमेन्स फैशन से नहीं था। इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, और हिस्ट्री ये है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हाई हील सबसे पहले पर्शियन हॉर्स राइडर यूज करते थे, ताकि राइडिंग के वक्त उनके फीट स्टिप्स पर स्टेबल रहे, और बाद में फिर धीरे धीरे यूरोप के रॉयल्स ने इसे स्टेटस सिंबल बना दिया था, और फिर धीरे धीरे हील्स फैशन वर्ल्ड का आइकॉनिक पार्ट बन गई, और तभी से एक बन गई फैशन स्टेटमेंट। आज हील्स की अगर बात करें तो अपने साथ कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और पर्सनल स्टाइल का सिंबल लेकर आती है, फिर चाहे बात हो ब्लॉक हील्स की, हाई हील्स की या फिर किसी भी तरह की हील्स की। तो भाई देखो, अपना एक स्टाइल, अपना एक वाइब लेकर आती है, और हील्स पहनने वाली गर्ल्स जानती है स्टाइल के साथ बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उनके लाइफ में बैलेंस एकदम बराबर रहता है। और आज का दिन ना एक रिमाइंडर लेकर आया, रिमाइंडर ये है फैशन इंपॉर्टेंट है पर कम्फर्ट और फुट हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो माई डियर लवली लेडीज, अगर आप हील्स पहनते हैं ना, तो सर स्टाइल के साथ साथ अपनी फुट हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं अवेयरनेस का भंडार लेकर आ गई हूँ। और कहा जाता है अवेयरनेस से फियर कम होता है और सपोर्ट बढ़ता है, इसलिए आज से सेलिब्रेट किया जा रहा है एपिलेप्सी अवेयरनेस वीक, यानी जो लोगों को एपिलेप्सी के बारे में अवेयर करने के लिए डेडिकेटेड है। और अगर इस वीक की बात करें तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर एपिलेप्सी है क्या। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से सीजर्स आ सकते हैं। अब इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कॉन्टेजियस नहीं होता, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर से नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है। एंड इसके साथ ही अवेयरनेस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एपिलेप्सी से डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए। अगर किसी को सीजर आए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले काम रहिए। जिस भी इंसान को सीजर आया है उस पर्सन को सेफ पोजिशन में रखिए, साथ ही सराउंडिंग में जितनी भी डेंजरस चीजें हैं सब हटा दीजिए। फोर्सफुली उस इंसान को होल्ड मत कीजिए और ना ही उन्हें पानी पिलाने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग

एम्पैथी किसी भी कंडीशन से लड़ने की बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। सो माय डियर लिसनर्स, हमेशा प्यार एंड रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए और साथ ही मिथ्स पर नहीं फैक्ट्स पर ट्रस्ट कीजिए। इसी के साथ बने रहिए रेडियो 89.6 FM पर, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। हम तो

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अगर बात फ्यूचर की करें ना, तो फ्यूचर अब दूर नहीं बल्कि हमारे हाथों में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चले इस बारे में बात कर लेते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज से स्टार्ट हो गया है टेक वीक, और हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं इनोवेशन, गैजेट्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम। अब बात कर ही रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इसने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया है। सबसे पहले जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट है ना, स्मार्ट हो गए, यानी कि आप घर बैठे कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। एंड अगर एआई की बात करें तो इतने स्मार्ट टूल्स हमें मिले हैं कि काम चुटकी बजाते हो जाता है। हेल्थ के लेवल हो या फिर कम्युनिकेशन, हर जगह हमें टेक्नोलॉजी नजर आती है, यानी कि हर चीज ना स्मार्ट होते जा रही है। और आज का टेक ट्रेंड भी यही कहता है, एआई रोबोटिक्स और ऑटोमेशन फ्यूचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब आप खुद को ही देख लीजिए ना, अगर कहीं जाना होता तो पहले हम डायरेक्शंस पूछते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, जीपीएस खोलते हैं और बिना किसी से पूछे पूरा का पूरा रास्ता तय कर लेते हैं। तो ये क्या है टेक्नोलॉजी ने हम सबके लिए, लेकिन ये वीक अपने साथ एक रिमाइंडर लेकर आया, एंड रिमाइंडर ये है टेक्नोलॉजी पावरफुल है लेकिन उसका सेफ और स्मार्ट यूज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो इस टेक वीक में इनोवेशन को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन डिजिटली अवेयर भी रहना उतना ही जरूरी है। सो बी स्मार्ट और सेलिब्रेट कीजिए पूरे वीक टेक वीक को, और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ क्या लिख रहा है? बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

कभी आपने सोचा है कि हमारे वर्ड्स किसी को कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है काइंडनेस चूज करना जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अगर बात करें बुलिंग की तो सबसे पहले आइए चलिए जानते हैं कि आखिर बुलिंग होता क्या है। अगर बुलिंग की बात करें तो इसका कोई एक तरीका नहीं है। अगर आप किसी को वर्बली हर्ट करते हैं वो भी बुलिंग का पार्ट है। किसी को फिजिकल या फिर इमोशनल हार्म करना वो भी बुलिंग के अंदर आता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रोलिंग या साइबर बुलिंग ये भी बुलिंग का पार्ट है। तो याद जरूर रखिए, रिस्पेक्ट एवरीवन, किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर बुलिंग देखें तो स्टैंड जरूर लें और बुलिंग के खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएं। इसी के साथ बस कहना चाहती हूँ, बी काइंड बिकॉज यू नेवर नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू, और छोटी सी काइंडनेस किसी की लाइफ बदल सकती है। तो बस आज इसी थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बस यही कहना चाहेंगे, स्प्रेड लव, स्प्रेड केयर और हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कच्छ हटके।

0: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ। सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

अक्सर हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जिस दिन तुम पेरेंट बनोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल होता है पेरेंट बनना, और पेरेंट्स बनना इजी नहीं होता। और इस लेसन को ना शायद स्कूल ने प्रैक्टिकल वे में सिखा दिया है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज के सोशल स्यापा में चाइना से एक ऐसा इंसिडेंट लेकर आई हूँ जहाँ पर चाइना के स्कूल का एक यूनिक आइडिया सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। सो अगर स्कूल की मैं बात करूँ ना तो यहाँ के स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट पूरा एक वीक तक बेबी डॉल्स को कैरी करता है, उनको एक रियल बेबी की तरह ट्रीट करता है। और इतना ही नहीं, पूरा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आखिर स्टूडेंट्स को करना क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपने साथ एक डॉल को रखना पड़ता है, उन्हें फीडिंग और स्लीपिंग रूटीन मैनेज करना पड़ता है। नहीं नहीं, उनकी केयर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी पड़ती है, जैसे कि आप एक रियल बच्चे को संभाल रहे हो। सो अगर इस एक्टिविटी की बात की जाए ना तो इसके पीछे का एक पर्पस, और पर्पस ये है कि स्कूल का मानना है कि इससे स्टूडेंट को पेरेंटिंग स्ट्रगल समझने में हेल्प मिलेगी, और साथ ही इस एक्टिविटी से उन्हें अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील होगा। सो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकली फील होती है तब अप्रिसिएशन नेचुरली आ ही जाता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट ना एक इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आता है, जैसे कि होमवर्क और एग्जाम के बीच जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो यही एक लेसन है जो स्टूडेंट को पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। सो है तो बड़ा मजेदार, मस्ती के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख रहे हैं और कुछ यूनिक मिल रहा है। बिकॉज अगर स्कूल की बात की जाए ना तो पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे, ऐसे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई जाए ना तो बच्चों को मजा आता है स्कूल जाने में। और देखिए, अगर आप पेरेंट्स के दुख दर्द को समझ पाए तो फिर क्या ही चाहिए हमारे पेरेंट्स को। सो इनिशिएटिव बहुत

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया और स्कैम ये है, शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से। बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपीके फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपीके फाइल। तो आखिर ये एपीके फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपीके फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए एप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है, उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सो आज की बातों का कोटा हो गया है यही पूरा, और इस मॉर्निंग एक्सप्रेस के सफर पर अब लगने वाला है विराम आज के लिए। कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारी मस्ती के साथ, और इसी के साथ ना आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा। लेकिन आज नहीं, कल फिर से आएंगे, कल मॉर्निंग एक्सप्रेस किस एक्सप्रेस को लेकर, और इस सफर पर निकल पड़ेंगे जहां पर आपको रेडियो महारानी एंटरटेनमेंट का डबल डोज देगा। सो मेरे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साइबर स्कैम से बच के रहिएगा, साथ ही एंजॉय कीजिएगा ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों मैं बात करता हूँ अब फरीदाबाद के गलियारे, सबसे पहले मौसम के बारे में। जहाँ 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त फरीदाबाद शहर का तापमान बना हुआ है और अनहेल्दी सेंसिटिव EQI भी शहर का बना हुआ। जी हाँ, जहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है और इतनी ज्यादा लू चल रही है, इसी बीच EQI भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। 149 EQI इस टाइम शहर का बना हुआ है, जहाँ हम लोगों को जरूरत है इसे मेंटेन करने की, चाहे कारपूल करके, ट्रांसपोर्ट्स कम यूज करके और साथ ही साथ गार्बेज ना जलाएं, वाटर फॉगिंग करें पार्क्स, सोसाइटीज और गार्डन्स में, कि EQI को कंट्रोल किया जा सके और शहर की हवा को साफ सुथरा बनाया जा सके। बाकी ऐसी और भी चर्चा फरीदाबाद शहर से ला रहा हूँ, उससे पहले कुछ और खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों। यहाँ दोस्तों मैं बात करता हूँ जहाँ आप सब जानते हैं कि अपील की गई है पूरे देशवासियों से कि जितना हो सकता है पेट्रोल तेल डीजल बचाएं, जिस बीच कहा गया है मेट्रो से सफर करें। यहीं पे डिपार्टमेंट्स की तरफ से अगर बात की जाए कश्मीर गेट से राजा नाहर सिंह स्टेडियम तक 2 नई ट्रेनें भी दी गई हैं सौगात के तौर पर और 6 फेरे अतिरिक्त बढ़ाए गए हैं। जहां पर अगर बात की जाए 3:24 में अब पीक आवर्स में ट्रेन मिलेगी, जहां पर नॉन पीक आवर्स में 4:40 में ट्रेन मिल जाएगी। क्योंकि ज्यादा लोग मेट्रो यूज करेंगे तो भीड़ हो सकती है, ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, तो पीक आवर्स में हर कोई अपने स्थान पर टाइम से पहुंचे, इसलिए मेट्रो बढ़ाई गई हैं। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, ना सोचे मेट्रो में भीड़ होगी, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ इस एडजस्टमेंट को लेकर के सरकार ने 2 ट्रेन भी बढ़ाई हैं, 6 राउंड्स भी बढ़ाए गए हैं ताकि आप लोग टाइम से पहुंच सकें और ज़्यादा किसी को कोई दिक्कत ना हो। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूँगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के खिलाड़ियों के बारे में। जब बात की जाए आचूल मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर से 6th NCR कराटे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई सेक्शन 27 कमिटी सेंटर में। जहाँ बात की जाए इस बार खिलाड़ियों ने यानी कि फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत करके फरीदाबाद शहर का नाम रोशन किया। जी हाँ, यहाँ पे बल्लभगढ़ की इस एकेडमी ने 10 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें कुमिति में पायल ने गोल्ड, काव्यांश ने गोल्ड, रोहित, अनुज, स्वाति, तनु ने गोल्ड जीता तो वहीं यश ने सिल्वर मेडल जीता और अपने कोचेस, फैमिली और पूरी एकेडमी का नाम रोशन किया। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट की आगे आकर के सिर्फ दिल्ली NCR का स्टेट लेवल नेशनल लेवल चैंपियंस जीत करके पूरे शहर का और देश का नाम आगे बढ़ाएं। बाकी इस चर्चा होते रहेंगे उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409, सेक्टर 15, नियर गेट नंबर 3, फरीदाबाद, हरियाणा। और अधिक जानकारी

के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कारली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी टॉनिक आरजे मौनिक यहाँ दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि बहुत जल्द इस वीकेंड और कुछ नेक्स्ट वीकेंड सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने को है बिल्कुल तैयार। कुछ का होगा आगाज सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ होंगी ओटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम। कहीं होगा बॉलीवुड का तड़का तो कहीं होगा साउथ इंडस्ट्री का एक्शन और थ्रिल तो कहीं सस्पेंस होगा हॉलीवुड का। कहीं होगा पंजाबी इंडस्ट्री गानों का तड़का। बताऊंगा ऐसी बहुत सी कहानी के बारे में जहां नई जोड़ी का होगा आगाज तो कहीं होगा डायरेक्टोरियल डेब्यू। सिनेमा के गलियार से बहुत सी चर्चा आप सबके लेकर के आ रहा हूँ लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियार में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाना।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुराग कश्यप की मच अवेचिज क्रिडी क्राम थ्रिलर बंदर का नया टीजर ऑफिशियल रिलीज किया गया, जिसमें बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा और सबा आजाद जैसे स्टार्स नजर आए। कोर्टरूम कम प्रिजन ड्रामा टोन दिखाया जा रहा टाइटल है बंदर, जिसे प्रोजेक्ट लेवल पर मॉन्की इन अ केज भी कहा जाता है। ये एक डिजिटल इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर कहानी जो एक बढ़िया स्टोरी लीगल सिस्टम करप्शन के बीच एक आदमी के गिरते हुए करियर और जिंदगी को दिखाती है। अनुराग कश्यप उनकी हाई इंटेंसिटी अर्बन कोचिंग कम प्रिजन ड्रामा ला रहे हैं। बॉबी, सान्या, सभा के अलावा यहाँ पे सपना प्रभी, राज बी शेट्टी, इंद्रनाथ शिवकुमरन, जितेंद्र जोशी, नागेश जैसे स्टार्स इसमें नजर आने वाले। रहेगा इंतजार इसके रिलीजिंग का जहाँ 5 जून को स्ट्रीम किया जाना है। बाकी ऐसी भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से BARC की वीक रिपोर्ट्स की, जहाँ TRP की अगर बात की जाए इस टाइम टीवी सीरियल्स टीवी शोज के बारे में बात करें, वसुधा इस बार पहली बार टॉप पर गया। जी हाँ, उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहुत ही दूसरे नंबर पर, और अनुपमा जो कि फर्स्ट और सेकंड पर रहा करता था टॉप 5 में, पांचवें नंबर पर स्थान हासिल कर पाया। वसुधा पहले नंबर पर आया, ये फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, वहीं क्योंकि सास भी कभी बहुत ही 1 की जगह 2 पर आते नजर आए। TRP अगर बात की जाए तो देखिए ये तीन वो सीरियल्स हैं जो हमेशा आपस में टक्कर देते नजर आते हैं, लेकिन बहुत लंबी अरसे से क्योंकि सास भी कभी बहुत का सीक्वल पार्ट TRP 1 पर हिट टिकेरा। अब वसुधा ने जो टक्कर दी है कि TRP इस वीकेंड हेल्थी नजर आई। बाकी ऐसे बिचर सागर में सुपर रिकॉर्ड रहा है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो, अरे पूरा सुन के चलो, सुन के चलो।
2: शीशी यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं,

0: बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है, पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
1: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो, रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
2: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
3: कुड़ी मैनू कहती

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी मॉर्निंग की यहाँ बात करते हैं। सैफ स्टारर ओरिजिनल कर्तव्य का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। फिल्म की अगर बात की जाए तो ओटी पर स्ट्रीम की गई और ट्रेलर के साथ साथ कहानी को भी अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। ये डायरेक्ट ओटीटी क्राइम ड्रामा कहानियां टाइटल कर्तव्य ग्रिडी पुलिस सेंट्रिक क्राइम ड्रामा कहानी जिसमें सैफ एक ऐसे ऑफिसर के रूप में दिखे जो ड्यूटी करप्शन और फैमिली क्राइसिस के बीच फंस जाते हैं। डायरेक्टर पुलकित ये उनकी नई बैक्ड फिल्म है जिसमें थ्रिलर पेस और इमोशनल टेंशन दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे कहानी में सैफ के अलावा रसिका दुगल, संजय मिश्रा, सौरभ द्विवेदी, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी स्टार्स नजर आ रहे हैं। ओटीटी लेवल एंसेंबल कास्ट कहानी लेकर के आए हैं। अब देखते हैं इस कहानी को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं क्या कमाल मचाएगी आगे आने वाले वीकेंड्स में। रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले एक और ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ फिल्मी गलियारे से अब हम बात करते हैं हैरी पॉटर टीवी सीरीज के पहले सीजन के रिलीज से पहले दूसरा सीजन को ऑफिशियल रिन्यू कर दिया गया। जी यानी कि स्टूडियो इतना कॉन्फिडेंट है कि फिर से इन्वेस्ट कर दिया है जबकि पहला एपिसोड अभी ऑन एयर भी नहीं हुआ। तो 26 की पहली आधा छोटे से आधे इस सीजन को 2 तक ग्रीन लाइट किया है जहां कहना है कि रिलीज से लगभग 7 महीने पहले दूसरे सीजन की पुष्टि दे दी गई है। जहां हर कोई जानता है हैरी पॉटर ऐसी फिल्म रही जिसकी हर सीरीज को बहुत पसंद किया गया, अब टीवी सीरीज के तौर पर इसको उतारा जाने वाले कुछ न्यू चेहरों के साथ किरदार वही रहेंगे, चेहरे बदल जाने वाले। सीजन 2 की एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से हैरी पॉटर और चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की बुक चीप पर गई है। और बात करें फिल्मिंग प्लान, सीजन 1 की शूटिंग 2025 के जुलाई में शुरू हुई थी और सीजन 2 की फिल्मिंग इसी साल फॉल ऑटम 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। और फर्स्ट सीजन की अगर स्ट्रीमिंग की बात की जाए उसका चल रहा है इंतजार कि कब सबके सामने लाया जाएगा टीवी सीरीज, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चा करता रहूंगा उस पर रिकॉर्ड रहा है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा। सुन में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर की। अब वक्त हो चला और आज का सफर ले चल रहा है 80 के उस दौर में जब सिनेमा सिर्फ फिल्म नहीं पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज होता था। एक्शन, इमोशंस, फैमिली ड्रामा भी और दोस्ती का स्ट्रॉन्ग तड़का। फिल्म में थे दो बड़े स्टार, स्टोरी में दोस्ती और बदले का एंगल था। फिल्म का टाइटल दो कैरेक्टर्स के नाम पर ही बना। सोचिए कौन सी थी ये कहानी जो 80 के दौर के वो दो बड़े स्टार्स को लेकर के आया था जिन स्टार्स ने अच्छा खासा कमाल किया, धमाल मचा और कहानी को सुपर डुपर हिट बनाया। आज ही के दिन यानी कि 20 मई को ये कहानी स्ट्रीम की गई थी यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर इस कहानी को लेकर के आए थे। ये कहानी की अगर बात की जाए एक ऐसी कहानी जो फैमिली से कनेक्टेड और दोस्ती से जुड़ी कहानी सबके सामने लाती है, 1988 की बात थी। कहानी का नाम भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले सुना रहा था कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मुराया मारे गिल गुमराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े
1: मुराया मारे गिल गुमराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े।

0: अंधेरी रात में।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी चौनिक और जो मौनिया सिनेमा के गलियारे से बात कर रहे हैं। आज के दिन की जब राम अवतार कहानी रिलीज हुई, अनिल कपूर और लेजेंडरी सनी देओल इस कहानी में नजर आए। साथ ही फिल्म में थी श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री। फिल्म में एक्शन, इमोशन और फ्रेंडशिप का स्ट्रॉन्ग मिक्स था। 80 का म्यूजिक और मसाला एंटरटेनमेंट दोनों को कॉम्बो था राम अवतार। अंगुली में अंगूठी और निगोरे मर्दों का, और उस दौर की खास बात भी यही थी, गाने सिर्फ सॉन्ग नहीं पूरी स्टोरी का इमोशंस लेकर आते थे। गाने ये नहीं कि स्टोरी लाइन से बिल्कुल हटके नजर आए, गाने ही कहे जाते थे कुछ स्टोरी के किस्से कहानियां। ऐसी सिनेमा के कैलेंडर से और भी चर्चा करूंगा राम अवतार कहानी के, लेकिन उससे पहले एक और ट्रैक
0: बाजू।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।
1: इतनी सी बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: बोल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

0: सारथी रथ रोको, इधर देखो।
1: क्या हुआ महाराज, कोई इलेक्शन रैली जा रही है क्या?
0: रैली नहीं, ये देखो सड़कों और गलियों में हर जगह कचरा। नगर निगम के इलेक्शंस आ गए हैं, लेकिन सफाई का क्या?
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, वोट तो देना है पर सिर्फ वादों पर नहीं, जो असल में काम करे उन्हीं को।
0: बस यही तो कहना है, वोट उनको दो जो शहर की सफाई को प्रायोरिटी दें, जो सिर्फ अपनी कुर्सी के नहीं गलियों और सड़कों के भी बारे में सोचें।
1: बिल्कुल, इस बार वोट सिर्फ प्रॉमिसेस पर नहीं बल्कि साफ सड़कों और बेहतर शहर के लिए होगा।
2: रेडियो महारानी ला रहा है सिटी की सफाई कैंपेन, अपना वोट उन्हें दें जो सफाई को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वोट वाइजली, वोट रिस्पॉन्सिबली, शहर हमारा जिम्मेदारी भी हमारी। जिम्मेदारी भी हमारी।

0: बीजे सरकार
1: है। था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर की शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यह बात करते हैं सिनेमा के गलियार से। सिनेमा के कलंदर में राम अवतार कहानी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। असली मल्टी स्टारर फिल्म्स का क्रेज पीक पर था और राम अवतार भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बनी। एक्शन फैमिली ड्रामा स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट उस दौर की ऑडियंस का फेवरेट फार्मूला था। अस्सी की कौन सी मल्टी स्टारर फिल्म आज भी आप रिपीट देख सकते हैं बताइए जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता हूँ सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। अगर वो निर्वाते हैं तब तो सुनते हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ मैं क्या,

सोचिए, सिर्फ एक 13 साल की लड़की और उसके सामने हजारों लोग, लाइट्स और कैमरा, फिर एक ऐसी आवाज जो सबको चुप कर दे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। ये कहानी है सुनिधि चौहान की, जिन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ गाएंगी और सिर्फ जीतेंगी। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम था निधि चौहान। पापा थिएटर आर्टिस्ट और मम्मी घर का काम संभालती थी। घर में म्यूजिक का माहौल था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची एक दिन इंडिया की सबसे पावरफुल फीमेल वॉइस बनेगी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सुनिधि स्टेज पर परफॉर्म करने लगी थी। स्कूल फंक्शंस, लोकल शोज, जहां भी मौका मिलता वहां गा देती और लोग बस देखते रह जाते। फिर आया 1996 का एक शो, मेरी आवाज सुनो, एक सिंगिंग रियलिटी शो। 13 साल की सुनिधि ने उस शो को जीत लिया। तब जज थी लता मंगेशकर जी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जीतने के बाद सुनिधि और उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए। सपना था बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का, लेकिन मुंबई सपने पूरे करने से पहले उन्हें तोड़ता भी है। कई दिन स्ट्रगल में गुजरे, स्टूडियो के चक्कर, ऑडिशन, वेटिंग, रिजेक्शन। फिर एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव ने उनकी आवाज सुनी और 1999 में आई फिल्म मस्त, सॉन्ग था रुकी रुकी सी जिंदगी। बस यहीं से सुनिधि चौहान का नाम बॉलीवुड में गूंज उठा। सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली जंग बाकी थी। और कैसे उन्हें सक्सेस मिला और कैसे उन्होंने प्रेशर को

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा।

जब 16 साल की लड़की को फेम मिलता है तो लोग तालियां भी बजाते हैं और उंगलियां भी उठाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में सुनिधि चौहान की। फिल्म मस्त के बाद सुनिधि को काफी सारे ऑफर्स मिले। उनकी आवाज में एनर्जी थी, बोल्डनेस थी, एक अलग ही एटीट्यूड था, लेकिन इंडस्ट्री में कंपैरिजन शुरू हो गया। ये नेक्स्ट अलीशा चिनॉय है, ये सिर्फ फास्ट सॉन्ग्स के लिए ठीक है। सुनिधि को एक टैग मिल गया, आइटम सॉन्ग्स और हाई एनर्जी नंबर्स की सिंगर। उन्होंने महबूब मेरे, धूम मचा ले, बीड़ी जले ले ऐसे टाइप के सॉन्ग्स गाए जो सुपर हिट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होने लगा कि लोग उनकी वर्सेटैलिटी को नहीं समझ रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी इजी नहीं थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने से काफी बड़े कोरियोग्राफर बॉबी खान से शादी कर ली फैमिली के अगेंस्ट जाकर, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक साल में टूट गया। एक यंग लड़की जिसके पास फेम है, पैसा है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं। इस वक्त सुनिधि डिप्रेशन फेज से भी गुजरी, लेकिन यहीं से उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगी, मैं रूल करूंगी। और कैसे उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। I've been

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी ले किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हर सिंगर गा सकता है, लेकिन हर सिंगर खुद को दोबारा बना नहीं सकता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। साल 2000 के मिड्स में सुनिधि ने अपनी आवाज पर काम करना शुरू किया, क्लासिकल ट्रेनिंग ली, वोकल कंट्रोल इम्प्रूव किया, और फिर आया फेज जहां लोगों ने कहा ये सिर्फ आइटम सॉन्ग सिंगर नहीं है। सॉन्ग्स लाइक भागे रे मन, सजना वे सजना, आ जरा, शीला की जवानी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सॉफ्ट रोमांटिक भी गा सकती हैं, सेंशुअल भी, क्लासिकल टच भी, और फुल रॉक स्टार एनर्जी भी। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस एक अलग लेवल की थी। लाइव कॉन्सर्ट्स में वो सिर्फ गाती नहीं थी, स्टेज को खुद ओन कर लेती थी। उन्होंने वेट लॉस किया, फिटनेस पर फोकस किया, स्टाइल ट्रांसफॉर्म किया। सुनिधि अब सिर्फ सिंगर नहीं थी, वो परफॉर्मर थी। फिर उन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए, इंग्लिश ट्रैक्स भी रिकॉर्ड किए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करी, और कैसे आगे उनकी लाइफ में प्यार, मदरहुड और बैलेंस आया, सबके बारे में करेंगे बात मगर इस गाने के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, हेलो,

क्या एक रॉकस्टार सिंगर एक काम मदर बन सकती है? स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। साल 2012 में सुनिधि ने म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से शादी की। ये रिश्ता मैच्योर था, समझदारी भरा था। 2018 में उनके बेटे का जन्म हुआ। मदरहुड के बाद उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया लेकिन म्यूजिक कभी नहीं छोड़ा। सुनिधि ने इंटरव्यूज में कहा, मैं अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। उन्होंने रियलिटी शोज में जज का रोल भी निभाया, इंडियन आइडल, द वॉइस। अब वो सिर्फ सिंगर नहीं थी, मेंटोर भी थी। एक टाइम जो लड़की स्ट्रगल कर रही थी, अब वो नए सिंगर्स को प्लेटफॉर्म दे रही थी। और आगे कैसे सुनिधि चौहान द अनस्टॉपेबल वॉइस बनी, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अगर बॉलीवुड की फीमेल वॉइसेस की लिस्ट बनेगी ना, तो सुनीति चौहान का नाम बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सुनीति चौहान की, जिन्होंने 3000 से भी ज्यादा गाने गाए, मल्टीपल लैंग्वेजेस, फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? उन्होंने कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इंडस्ट्री में जब सॉफ्ट स्वीट वॉइसेस का ट्रेंड था, तब उन्होंने बोल्ड हस्की पावरफुल वॉइस को मेनस्ट्रीम बना दिया। उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, रेबिलियन है, फ्रीडम है। सुनीति चौहान सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक एरा है। और शायद इसीलिए जब भी स्टेज पर उनका नाम अनाउंस होता है, क्राउड बस एक ही चीज चिल्लाता है, वंस मोर, वंस मोर। तो ये थी कहानी सुनीति चौहान की, जो अपने में ही एक लेजेंड है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। इस पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आगे आप किस इंसान की, किस पर्सनालिटी, किस फेमस सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं, हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: Everything else is a shit.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ किसी शॉर्टकट के फेवर में नहीं होती। आप चाहो मेहनत करो फिर भी सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। आज बिजनेस अनप्लग में मैं किसी नाम से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सम स्टोरी डिजर्व पेशेंस, उन्हें धीरे धीरे खुलना चाहिए। मैं हूँ गीत एंड हियर वी टॉक अबाउट पीपल जो ओवरनाइट सक्सेस के पोस्टर पर नहीं आते, लेकिन जिनकी जर्नी रियल होती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनकी लाइफ में रिसोर्सेज कम थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा। बैकग्राउंड सिंपल था, फैमिली भी सिंपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दी थी। फॉर्मल एजुकेशन एक पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई, नॉट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था बट बिकॉज सर्वाइवल केम फास्ट। जब आपको चूज करना पड़े ना बिटवीन डिग्री एंड डेली नीड्स, तो ड्रीम्स थोड़ा वेट पर चले जाते हैं। इस इंसान ने भी वही किया, फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा सिर्फ इसीलिए ताकि काम मिल सके। अर्ली इयर्स में इनको ये समझ आ गया था कि कंफर्ट जोन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो काम मिला वो किया, नो ईगो नो कंप्लेंट्स। 2 साल तक पूरी सिंसेरिटी के साथ इन्होंने ट्राई किया, बट बिजनेस डजंट ऑलवेज रिवॉर्ड अफोर्ड इमीडिएटली। वो वेंचर फेल हो गया एंड दैट फेज वॉज रियली टफ। पैसे का प्रेशर, घर का प्रेशर और खुद से एक सवाल, अब आगे क्या। देयर वॉज अ डे जब बेसिक थिंग्स भी स्ट्रगल बन जाती, सब एक साथ हैवी लगता, और यही वो वक्त होता है जहाँ लोग रुक जाते हैं। बट ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ नेगेटिव लग रहा था तब इस इंसान ने एक सिंपल चीज नोटिस की, चाहे लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग एक चीज एंजॉय करना नहीं छोड़ते, समथिंग टेस्टी, समथिंग कम्फर्टिंग। फूड इज इमोशन, और जब इमोशन समझ आए तो बिजनेस भी डायरेक्शन दिखाता है। अभी ये सिर्फ एक थॉट था, एक ऑब्जर्वेशन, एक्शन अभी बाकी था। कैसे एक ऑर्डिनरी स्पेस जैसा एक सिनेमा हॉल एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और आज मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ ने इजी मोड कभी ऑन ही नहीं किया। अब कहानी थोड़ी और रियल होने वाली है। बिजनेस फेल हो चुका था, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो और फैमिली की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली प्रेशर में थी। इस फेज में इस इंसान ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं लिखा, बस एक चीज की, काम। जो काम मिला वो किया, कभी एक सिनेमा हॉल के अंदर, कभी उसके बाहर, कहीं काउंटर्स पे हेल्प, कहीं पोस्टर चिपकाना, कहीं सीट रिपेयर, कहीं छोटी मोटी मेंटेनेंस। सैलरी ज्यादा नहीं थी बट इट वॉज ऑनेस्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली ये वही स्टेज होती है जहाँ ईगो या तो टूट जाता है या फिर कैरेक्टर बन जाता है। लाइफ यहाँ भी स्मूथ नहीं थी, रेंट के इश्यूज, बेसिक एक्सपेंसेस का स्ट्रेस, इतना कि एक टाइम पर घर छोड़ना भी पड़ा। इमेजिन दैट मोमेंट जब आप सिर्फ इसीलिए शिफ्ट करते हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते हो, बट स्लोली हार्ड वर्क नोटिस होने लगा। सिनेमा हॉल की कैंटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड इनकम। इट वॉजंट बिग मनी बट इट वॉज स्टेबिलिटी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, रोज लोग मूवी देखने आते, हंसते, चिल करते और इंटरमिशन में एक ही चीज ढूंढते, कुछ खाने की। ये इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। लोग क्या पसंद करते हैं, कौन से फ्लेवर्स चाहते हैं, कौन सी चीज रिपीट होती है, विदाउट एनी MBA, विदाउट एनी फॉर्मल रिसर्च, बस रियल लाइफ डेटा। और यहीं पे पहली बार दिमाग में इनके एक थॉट आया, व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग। अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस एक आइडिया था। और आइडियाज अक्सर सबसे पहले चुप होते हैं, और इस पॉइंट पर ना कोई ब्रांड था, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इन्वेस्टमेंट का बैकअप, बस एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग विल कि इस बार कुछ अलग ट्राई करना है। कैसे एक छोटी सी शुरुआत होम मेड लेवल से स्टार्ट होती है, कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट लोगों का फेवरेट बनने लगता है, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। गाना सुनते हैं, पहले गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज, योर अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपको एक जर्नी सुनाने वाली हूँ, बिना नाम बिना ब्रांड, सिर्फ स्ट्रगल चॉइसेस और ऑब्जर्वेशन की कहानी। अब टाइम है उस नाम को सामने लाने का जिससे इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज चंदू भाई वीरानी, फाउंडर ऑफ बालाजी वेफर्स। यस, वही बालाजी वेफर्स जिसके पैकेट्स आज ऑलमोस्ट हर घर, हर शॉप, हर एज ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। सोचो, जो सफर एक सिनेमा हॉल की कैंटीन से स्टार्ट हुआ, आज वो इंडियन स्नैक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। चंदू भाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक हैबिट बना दिया। आज बालाजी वेफर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट करती है। गुजरात से शुरू हुआ ये ब्रांड आज नेशनल प्रेजेंस रखता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स वेफर्स, सेव, नमकीन रेंज, हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड। टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ में है और ये प्योर नंबर्स हैं। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन जहां 5000 लोग काम करते हैं। सोचो, उस इंसान को जो कभी रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज हजारों फैमिली की आशाएं उसके विजन से जुड़ी हुई हैं। फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लॉजिस्टिक, रिटेल रीच, एवरीथिंग बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, नो ओवरनाइट मैजिक। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बालाजी वेफर्स ने कभी फ्लैशी एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया। प्रोडक्ट ने खुद अपना काम किया, टेस्ट ने मार्केटिंग संभाली। चंदू भाई वीरानी आज भी सिंपल थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं है, बल्कि ट्रस्ट का था। ट्रस्ट ऑन क्वालिटी, ट्रस्ट ऑन कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट ऑन पीपल। और शायद इसीलिए बालाजी वेफर्स सिर्फ मार्केट में नहीं, लोगों के रूटीन में भी है। तो क्यों ना अभी एक गाना सुन लिया जाए। गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी, बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट वेफर्स, इट्स अबाउट डिसीजन। सो स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा पॉज लिया जाए और उनके चाइल्डहुड में डाइव किया जाए। इनका चाइल्डहुड दरअसल फ्लैशी नहीं था, नो बिग ड्रीम्स, नो बिग एक्सपोजर, बस एक सिंपल सा घर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में सब कुछ इजिली नहीं मिलता है। ये स्कूल ज्यादा दूर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, नॉट बिकॉज कैपेसिटी नहीं थी, बट प्रायोरिटीज अलग थी, फैमिली फर्स्ट, सर्वाइवल फर्स्ट। बचपन में ही ये सीख मिल गई थी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो जरूरी है वो करना पड़ता है, और शायद यही अर्ली लर्निंग बाद में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ और स्केल कहाँ तक पहुँचा। अब सवाल ये है, बीच में ऐसा क्या किया गया जिसने एक स्मॉल सेटअप को एक सॉलिड बिजनेस बना दिया? बिकॉज ऑनेस्टली आइडियाज बहुत लोगों के पास होते हैं, एग्जीक्यूशन सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। बालाजी वेफर्स के केस में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये था कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे डिमांड कम हो, चाहे मार्जिन थोड़े टाइट हो, टेस्ट और कंसिस्टेंसी कभी नेगोशिएट नहीं करी जाएगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, स्लो बट कंट्रोल्ड ग्रोथ, नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो चेजिंग ट्रेंड्स, जो प्रोडक्ट चला उसे और बेहतर बनाया जाएगा। कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा कि सब कुछ एक साथ करना है, फोकस क्लियर था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मार्केटिंग नॉइज कम रखा गया, नो फ्लैशी कैंपेन्स, नो ओवर प्रॉमिसिंग एड्स, प्रोडक्ट बोला, कस्टमर ने ट्रस्ट बिल्ड किया और वर्ड ऑफ माउथ ने ब्रांड को ग्रो किया। यह अप्रोच थोड़ी ओल्ड स्कूल लग सकती है बट एक्सट्रीमली पावरफुल है। बालाजी वेफर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बहुत ग्राउंडेड रहा, लोकल मार्केट्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया और फिर आगे बढ़ा। ये स्ट्रेटेजी ये प्रूव करती है कि नेशनल बनने से पहले लोकल होना बहुत जरूरी है बॉस। और एक चीज जो पर्सनली मुझे बहुत स्टैंड आउट लगती है, पीपल मैनेजमेंट। कंपनी सिर्फ मशीन्स और फैक्ट्री से नहीं चलती, लोग चलाते हैं। और जब आप हजारों लोगों के साथ काम करते हो तो कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, कल्चर में भी होनी चाहिए। यहीं पे बालाजी वेफर्स एक बिजनेस से ज्यादा एक सिस्टम बन जाता है, नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। और शायद इसी वजह से ये ब्रांड डिकेड्स के बाद भी रेलेवेंट है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो वो ये होगी, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट। और आज हमने जिस जर्नी की बात की ना उसमें कोई शॉर्टकट था ना कोई मिरेकल मोमेंट। ये स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सी इंडस्ट्री चूज करें, ये सिखाती है कैसे सोचा जाए, कैसे प्रेशर में भी क्लैरिटी मेंटेन की जाए, कैसे ग्रोथ के चक्कर में कोर को लूज ना किया जाए। एक सिंपल माइंडसेट, अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर इंटेंट क्लियर है तो स्केल टाइम के साथ आता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपके डिसीजन करते हैं। और आज जब हम बिग नंबर्स, बिग फैक्ट्रीज और बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक फेज के बाद आता है। पहले फेज में सिर्फ पेशेंस होता है और प्रोसेस। और बिजनेस अनप्लग्ड का पर्पस भी यही है, सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करना है, जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आज की स्टोरी से आप एक चीज ले जा रहे हो तो वो ये हो, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड स्टे ऑनेस्ट टू द प्रोसेस। मैं हूँ आर जगीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कल फिर मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ, एक और ग्राउंडेड जर्नी के साथ। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप बिलीविंग और कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी किसी ऐसी जगह को देखा है जो दूर से सच कम और ख्वाब ज्यादा लगी, जहाँ पानी के बीच एक महल चुपचाप खड़ा हो, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दिन में सूरज की रोशनी उसे सोना बना देती है और रात में वो चांद का अक्स लगता है। वो कहा है कि कुछ जगह है सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आंखों में उतर जाती है। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजलि और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम चल रहे हैं पिंक सिटी, जयपुर के दिल में बसी एक मिस्टीरियस और खूबसूरत जगह की तरफ, जिसका नाम है जल महल। अब सवाल ये है कि पानी के बीचों बीच आखिर ये महल क्यों आया? तो सोचिए जरा, एक महल और वो भी झील के बिल्कुल बीच में।

0: ऊपर।
1: अब बात जल महल की करे तो ये महल बना था 18th सेंचुरी में महाराजा माधव सिंह के दौर में। ये महल असल में रॉयल डक हंटिंग लॉज के रूप में यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जयपुर की पहचान बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जल महल के 5 फ्लोर हैं, पर जब आप इसे देखते हैं तो सिर्फ 1 फ्लोर नजर आता है। अब बात आई बाकी, मतलब बाकी के फ्लोर पानी के अंदर। कुछ खूबसूरतियां पूरी दिखाई नहीं देती, शायद इसलिए और भी खूबसूरत हो जाती है। जब बात हो ही रही है इस जादुई महल की, तो वापस आकर जानेंगे आर्किटेक्चर का जादू क्या है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम पहुँच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल महल। पर अगर इस महल की बात करें तो आइए चलिए जानते हैं इस महल का आर्किटेक्चर का जादू। जल महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल मिक्स है। लाल सैंडस्टोन से बना ये महल अपनी सिमेट्री और सिंप्लिसिटी का मास्टरपीस माना जाता है। फिर बात करें छतरिया, मेहराब और उनका पानी में रिफ्लेक्शन, जैसे आर्किटेक्चर और नेचर एक साथ पेंटिंग बना रही हो। और जब मॉनसून में लेक बाहर जाती है तो महल लिटरली पानी पर तैरता हुआ लगता है। वो कहा है कि पत्थर भी कभी कभी इतने खूबसूरत लगते हैं कि वक्त उन्हें तोड़ने की बजाय संभाल कर रखते हैं। अब बात कर रहे हैं इस लेक की, तो आइए जानते हैं मानसागर लेक की कहानी। जिस लेक में जल महल बसा है उसे कहते हैं मानसागर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक थी जो पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, पर धीरे धीरे ये महल और लेक जयपुर का पोस्ट कार्ड बन गए। सुबह के वक्त जब सूरज का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है तो पूरा सीन सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई ओल्ड रॉयल फिल्म चल रही हो। लेकिन ये महल सिर्फ अपने आर्किटेक्चर की वजह से नहीं जाना जाता, ये महल अपने अंदर बहुत सारी मिस्ट्री एंड साइलेंस छुपाए बैठा है, जिनके बारे में बातें करेंगे वापस आकर। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे इसलिए आपके साथ। और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं जल महल के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है सबसे मिस्टीरियस बात क्या है? आज भी लोग जल महल के अंदर फ्रीली नहीं जा सकते, दूर से सब उसे देखते हैं, पर अंदर की दुनिया अब भी काफी हद तक हिडन है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से जल महल और भी मैजिकल लगता है। वो कहा है कि हर खूबसूरत चीज का थोड़ा मिस्टीरियस होना जरूरी है। अब बात करें राजस्थान की शाम, तो शाम के वक्त जल महल के आसपास की हवा ही अलग लगती है। रोड साइड चाय, राजस्थानी म्यूजिक, ठंडी हवा और सामने लेक में चमकता महल। एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे वक्त भी धीरे धीरे चलने लगा हो। वो कहा है कि कुछ शामें आवाज नहीं करती, बस याद बनकर रह जाती है। इसलिए शायद इस जगह को माना जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज। इस बारे में भी वापस आकर बातें करेंगे, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम पहुंच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल महल। तो बाद हमने बहुत सारी की आज इस महल के बारे में और आपको ये भी बताया कि इस महल को कहा जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज यानी फोटोग्राफर्स के लिए जल महल हेवन माना जाता है। सनराइज सनसेट रिफ्लेक्शन शॉट्स हर एंगल से ये महल अलग मूड क्रिएट करता है, कभी रॉयल कभी लूली कभी ड्रीमी, जैसे एक महल नहीं एक इमोशन हो। और शायद यही रीजन है कि अपने साथ ये महल कल्चर एंड आइडेंटिटी लेकर चलता है। जल महल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये राजस्थान की रॉयल एलिगेंस का सिंबल है। एक रिमाइंडर कि इंडिया में आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, कहानियां होती है। और हर कहानी में पानी हवा रोशनी और वक्त अपना रोल प्ले करते हैं। और शायद यही वजह है कि जल महल हमें खूबसूरत बात सिखाता है कि हर चीज को पास जाकर समझना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें दूर से ही दिल में उतर जाती हैं। वो कहा है कि हर महल में शान नहीं होती, कुछ में सुकून भी होता है। और जल महल भी उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ पानी भी कहानी सुनाता है। अगर कभी आप जयपुर जाओ तो जल महल के पास थोड़ी देर जरूर रुकना, हो सकता है वहाँ की हवा आपके अंदर के शोर को थोड़ा कम कर दे। इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और जगह एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

0: कुछ आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
2: गाइस टेल मी वन थिंग, क्या आप लोगों को भी आज गर्मी में मन कर रहा था कि बार बार पानी पीते जाएं, और साथ में आप लोगों ने शायद दही भी खाई होगी, छाछ भी पी होगी एंड नारियल पानी भी पिया होगा, हो सकता है आपने बेल का रस भी पिया होगा। तो ये सब पीते रहो क्योंकि गर्मी अभी बाकी है मेरे दोस्त, और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहां पर सब कुछ बताऊंगा। मैं तो बस ये बताने आया था कि मैं आ गया हूं आप सभी के लिए, गाना चला रहा हूं रेडियो महारानी 89.6 पर, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें करूंगा मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल ये गाना सुनिए, इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं बस यूं गया और यूं आया, आप सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

हर जगह मची हुई है मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। देखो पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बढ़ता जा रहा है, कूड़ा करकट है वो बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी, चलिए खैर कितनी बातें करेंगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब देखो मैंने इसमें बेरोजगारी की बात करी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, हर जगह छटनी हो रही है, बहुत तेजी से छटनी हो रही है। मेटा एआई हो, गूगल हो या फेसबुक हो, हर जगह इसे लोगों को निकाला जा रहा है। तो करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर बात, और मैं बात करना चाहता हूँ बढ़ते हुए रेंट के ऊपर भी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप 3 BHK घर ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा 3 BHK, वो भी अंडर 20,000 तो शायद मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, अंडर 25,000 भी अगर आपको 3 BHK मिल जाता है ना फरीदाबाद में तो भी बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ फरीदाबाद में जो टोल प्लाजा है, एक टोल प्लाजा है बदरपुर पर, दूसरा आप जब पलवल की तरफ जाते हो तो आपको एक टोल प्लाजा मिलता है, मगर ऐसा ही एक टोल प्लाजा दिल्ली में इंस्टॉल किया गया था बैरियर लेस, तो वहां पर लोगों ने चालाकी शुरू कर दी है। कैसी चालाकी शुरू कर दी है, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। तो दिल्ली से लेके फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेके ऑल ओवर इंडिया सारी अपडेट्स लेकर आ गया हूं। अब अगले 3 घंटों तक आप सभी के साथ ढेरों बातें होने वाली है, तो फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक गाना जो कि मेरा बड़ा फेवरेट हो गया आजकल, क्योंकि दिल्ली से जाना है मुझे कहां पर, सुनिए इस गाने को।

0: हमेशा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

मुझे अब बताओ, बताई दो, क्योंकि कभी जा रहा है 44 डिग्री तो कभी जा रहा है 36 डिग्री और कभी पहुंच जा रहा है 32 डिग्री तक। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। दोपहर की बात है, आज दोपहर 12-1 बजे के आसपास की बात होगी। मैं घर से बाहर निकला था ऑफिस आने के लिए, हाँ इसी टाइम पर आता हूँ क्योंकि 8 बजे तक आप सभी के साथ होता हूँ ना। तो देखो मेन टॉपिक यही है कि मैं घर से बाहर निकला, आई वाज लाइक कि अंधेरा कैसे हो गया ये। फिर मेरे को याद आया मैंने सनग्लासेस पहन रखे, मैंने उसको हटाया तो उसके बावजूद मुझे लगा कि हाँ आसमान में बादल है। फिर मैंने जब ऊपर नजर घुमाई तो सिर्फ एक बादल का टुकड़ा सा था और वो टुकड़ा सिर्फ सूरज के आगे आ रखा था, इस वजह से मुझे लगा था कि बादल आ गए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है 22 मई तक गर्मी का, और आपको इस गर्मी से बच कर रहना है और रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो तबीयत का ध्यान हम ही लोगों को देना है इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में। आप लोगों को जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहना है। आप लोग पानी पीजिए खूब सारा, आप लोग लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, साथ ही साथ आप कोकोनट वाटर भी यूज़ करिए। और देखो 22 तारीख के बाद ऐसा नहीं है कि रिलीफ मिल जाएगा, आपको हो सकता है कि 45 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंच जाए इसी महीने के एंड तक। तो हम लोग प्रे करेंगे कि बस जल्दी से ये महीना निकल जाए, जिस तरह से अप्रैल निकला था, जिस तरह से जनवरी फरवरी निकली थी, बस ऐसे निकल जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना बहारा, मगर आपको बाहर जाना नहीं है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहे।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

मौसम मौसम रह जाओ कि बाहों में मेरे, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाहों में क्या है हमारे, पोल्यूशन है और कुछ नहीं है, आसमान में जो हवा है वो तक साफ नहीं है। और उसमें मेरा दोस्त आके कहता है भाई एसी ना हानिकारक होता है, सब कुछ ही हानिकारक है, साफ क्या है हमारे लिए कोई नहीं बता पा रहा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड अब वो लोग कम मिलते हैं, उनकी तादाद थोड़ी सी कम हो गई है, जो लोग कहते थे कि एसी चलाने से घुटनों में दर्द हो जाता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं ऐसी बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि पोल्यूशन फिर से बढ़ गया है। अब पोल्यूशन का एसी से क्या मतलब है बता देता हूं आपको। सीएफसीज निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्यादा साइंस में घुसेंगे नहीं, वापस आते हैं मुद्दे पे। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ गया है, एक जगह पे 200 से ऊपर का AQI लेवल नापा गया है। और आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हानिकारक वाली रेंज में ये पहुंच गया है। और ग्रैप वन की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई है, बट ये जल्दी से हट जाएगी क्योंकि देखो गर्मियों में क्या होता है, आसमान में जितनी भी नमी है ना वो सारी की सारी सूख जाती है, फिर पोल्यूशन ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। वापस आकर बात करते हैं उस पोल्यूशन के बारे में जो कि फरीदाबाद में फैल रहा है, और उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का पोल्यूशन। करेंगे इसके बारे में बात।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो तुम सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

क्या आप लोग भी जब दुकान पर जाते हो तो दुकानदार से पन्नी मांगते हो? प्लीज ये पन्नी मांगना बंद कर दीजिए। पन्नी कह लो या पिन्नी कह लो, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक वीडियो वायरल हो रहा है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का, और वहां पर एक दुकानदार का चालान काटा गया है 10,000 रुपए का। और ये चालान जब काटा गया है तो फिर ये है सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से। तो देखो, जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक था ना, भले ही वो पॉलिथीन हो और जो प्लास्टिक के ग्लास होते पतले वाले वो हो या कुछ भी हो, सारे सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं जिनको आप एक बार यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो ये इन सब पे बैन लग चुका था साल 2022 में, मगर वो बैन कितना सक्सेसफुल रहा ये तो हम सभी जानते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा और हम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक खुद से ही अवॉइड करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? तो चलिए, इस पर आप लोग क्या मानते हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

एक मजेदार सा गाना था ये, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप लोगों से बस एक गुजारिश करूंगा और वो ये है कि अगर आप पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेस देखोगे फरीदाबाद में कितने हैं, वो आपको दिखेगा कि पिछले कुछ हफ्तों से वो प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं हम सबको मालूम है क्यों बढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। और मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के पास पहुंच चुका है पेट्रोल का दाम, और वहीं पर अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी 92 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। और अगर आप किसी और कंट्री का जानना चाहोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो इंडिया का तो फिर भी ऑलमोस्ट 99 है, बट अभी अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की या फिर अमेरिका की, पहले अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में ये प्राइस बढ़ चुका है 1.20 US डॉलर, और ये 1.20 US डॉलर बहुत ही ज़्यादा है, बता दूं बहुत ज़्यादा मतलब सच में बहुत ज़्यादा है, 120 के आसपास पहुंच रखा है, 120 भी शायद मैं कम बता रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेटर खोल के बैठा नहीं हूं, बट स्टिल तो ये जब तक क्राइसिस रहेगा तब तक प्राइजेस ऐसे ही रहेंगे, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहेंगे। और मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी दुनिया भर में शांति हो जाए, और जैसे ही शांति होगी वैसे ही हम सब भी लाइफ, हम सब की लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि कार पूलिंग करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, तो हम लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। और वर्क फ्रॉम होम जिसको मिल चुका है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मिला है वो मैं हूँ ना आपके सभी के सामने, तो वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते चाहिए आप सभी के लिए किंग की आवाज़ में ये गाना। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 9.6।

क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग जिस टोल लाइन पर खड़े होते हो, मीन्स टोल प्लाजा में जिस लाइन पर खड़े होते हो, वही लाइन सबसे स्लो हो जाती है? ये मेरे साथ तो अक्सर होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं कौन, द मोस्ट वांटेड मुंडा है आप सभी के साथ। एंड मैं जो बात कर रहा हूं आप सभी से इस टाइम, वो यही है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, जिस लाइन में लगूं उस लाइन में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो गाड़ी को या तो बंद कर देगा या फिर बहस करना शुरू कर देगा और फिर बोलेगा नहीं नहीं मैं टोल नहीं दूंगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बैरियर फ्री टोल प्लाजा चालू किया गया था दिल्ली में, और अब लोगों ने वहां पर चालाकियां दिखानी शुरू कर दी है। आई वॉज लाइक, चलो यार बैरियर फ्री टोल प्लाजा चालू हो गया है, अब कुछ तो अच्छा होगा, लोगों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर दिल्ली वाले ही रहेंगे, मतलब इंडिया वाले ही रहेंगे। तो देखो ड्राइवरों ने क्या किया है, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है, या फिर अलग डिजाइन या फिर नंबर प्लेट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा विंडस्क्रीन पर हमारा फास्टैग लगा होता है, सबको पता है, तो फास्टैग रीड ना कर ले तो इसके लिए उन्होंने फास्टैग के ऊपर स्टिकर लगा दिया, और कुछ लोगों ने तो फास्टैग ही निकाल लिए ताकि ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन हो ही ना पाए। तो लोग सच में खुद से ही नहीं चाहते कि देश का डेवलपमेंट हो पाए, और डेवलपमेंट की बात जहां पर आती है तो हम लोगों का योगदान थोड़ा बहुत होना चाहिए, और वो किसी भी टोल की तरह से होना चाहिए। और यहां पर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम गाड़ी में खरीदते वक्त टोल दे रहे हैं, जब हम लोग टैक्स दे रहे मींस, और जब हम लोग काम करने का टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा टोल क्यों दें? तो ये सवाल का आंसर मेरे पास तो नहीं है, मगर हाँ अगर आपके पास है तो जरूर दीजिएगा। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: जिला सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

एक लड़का था हसमुख सा, हमेशा कॉमेडी किया करता था, बेरोजगारी बेरोजगारी रोज ये बोला करता था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूं वो इंडिया का ही लड़का है और बेरोजगारी पे कॉमेडी करता था, और इस बंदे का नाम है इन्फ्लुएंसर, मतलब नाम इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर है, असहाब अंसारी, साहब नहीं है, असहाब, तो असहाब अंसारी। अब ये बंदा बेरोजगारी पे खूब जोक्स बनाता था, बहुत सारी कॉमेडी करता था, मगर अब इसकी खुद की सरकारी नौकरी लग गई है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने एक्चुअली में इस लड़के ने SSC CGL में सफलता हासिल कर दी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट भी इस लड़के को मिल गई है। एक्चुअली मैं ये जितने भी जोक्स मारता था मेरे मन में समझ नहीं आया, क्योंकि इसने खुद से एक बार बताया था कि इनके जो फादर साहब हैं वो खुद एक सरकारी टीचर हैं। और YouTube की अगर बात करूं, इस बंदे के YouTube पर 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और Instagram पर 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आई डोंट नो इसको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यू नो अगर मैं आपको बताऊं Instagram और YouTube से लोग आजकल लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और टैक्स भी परफेक्ट टाइम पर दे रहे हैं। बट सरकारी नौकरी की एक अपनी रुतबा है, एक जोश और रौब है, और वैसे भी ये बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग गया है, तो मेरे ख्याल से काम तो करेगा। और बता दूं आपको, ये जो लड़का है इसका नाम है असहाब अंसारी, टांडा यूपी का रहने वाला है। तो चलिए ये तो ये कहानी, मगर इसके साथ साथ एक और बात मैं बोलना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि रेंट फरीदाबाद में बढ़ता जा रहा है? करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: हम सबको पता है कि फरीदाबाद का रेंट कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जो कि रिमिक्स ये गाना और अभी भी गाना चल रहा है, रुको बंद कर देता हूँ उसको। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड सबको पता है फरीदाबाद का रेंट बढ़ता जा रहा है, मींस फरीदाबाद में रेंट के लिए अगर आप जगह ढूंढने जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, रेंट के प्राइजेस आर रीचिंग स्काई हाई। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी के रेट्स की, तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ आप सभी से कि एक ऐसी जगह जहाँ का किराया 68,000 रुपये है, तो क्या आप लोग मानोगे? नहीं ना, नहीं मानोगे, मुझे पता है। मगर आप लोग बोलोगे कि कितना बड़ा है ये बता दे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिया का मामला पूरा बिल्कुल नहीं है, पेरिस में है। ये वीडियो जो आ रही है सामने, पेरिस की वीडियो है, और पेरिस में एक छोटे से फ्लैट का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है, जिसमें किराएदार खुद बता रहा है कि ये पूरा का पूरा घर पे पहुँचने के लिए आपको 134 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और जो रूम है उसका जब वीडियो मैंने देखा, आई वॉज लाइक ये रूम है या बाथरूम है, क्योंकि बाथरूम जितना छोटा है उनका रूम था, एक बस बेड और सोने के लिए, हाँ सोने के लिए बेड और साथ में कपड़े टांगने के लिए छोटी सी जगह थी, बालकनी वैल्कनी कुछ भी नहीं थी। तो आप सोचो कितने लकी हैं हम लोग कि हम लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपये में 3 BHK मिल जाता है कि नहीं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना इंद्रजाल और करण औजला की आवाज में, ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।
1: करण औजला इंद्रजाल प्रूफ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

कल ही मैं जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई, और उस वीडियो को देखते ही मुझे ऐसा लगा ये क्या हो रहा है इंडिया में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे गेट के बाहर। मुझे लगा कि ये सिलेंडर के लिए लाइन लगी होगी पक्का। फिर मुझे लगा थोड़ी सी अच्छी जगह दिख रही है, शायद पेट्रोल पंप के लिए लोग आए होंगे कि पहले जाके पेट्रोल ले लेते हैं, डीजल ले लेते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला था कि भैया ये तो कुछ और ही हो रहा है, मतलब कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज को खरीदने के लिए जा रहे थे। क्या थी वो चीज, बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड ये जो भीड़ थी, ये भीड़ है साउथ इंडिया की, मतलब एक वॉच को खरीदने के लिए लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे। और ये घड़ी जो कि आप अपने हाथ में पहन भी नहीं सकते, इसको खरीदने के लिए होड़ लगी हुई थी। 40,000 रुपए की ये पूरी की पूरी घड़ी है। आई डोंट नो व्हाई, क्या मिलता है लोगों को ये सब चीजें खरीद के। लोग लबूबू डॉल के पीछे पागल थे कुछ टाइम पहले, फिर उसके बाद कुछ और आया मार्केट में, और अब आ गई है 40,000 रुपए वाली घड़ी जिसको आप हाथ में पहन भी नहीं सकते। और इसके लिए मारामारी हो रही है, ना सिर्फ हमारे देश में, बाहर विदेशों में भी कई कई जगहों पर तो आंसू के गोले भी दाग दिए गए हैं। और बता दूं आपको, ये जो वॉच है इसे कह रहे हैं आर्मर्ड वॉच, ऑडोमर्स वॉच, और ये दो कंपनी ने मिलके एक लिमिटेड एडिशन घड़ी बनाई है। तो इस लिमिटेड एडिशन को लोग खरीदने के लिए बेचैन हो रखे हैं। आई डोंट नो कहाँ जा रहा है ये देश, कहाँ जा रहे हैं इस देश के युवा। चलिए अभी फिलहाल

यो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ऐसी खूब सारी बातें और अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। और वापस आकर बात करते हैं उस लेडी की जिसने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। आगे क्या हुआ बात करेंगे इसके बारे में, मगर इस गाने के बाद। Right.

0: जहां सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

आई डोंट नो व्हाई बट ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी मजा आता है. बट ये सिंगर इज फ्रॉम अनदर कंट्री. स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ. और अभी मैं थोड़ी देर पहले सस्पेंस में छोड़कर गया था कि ऐसी एक लेडी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था. 2021 में इनके 9 बच्चे हुए थे. पूरे 5 साल के हो चुके हैं इनके बच्चे और बिल्कुल स्वस्थ हैं सभी के सभी. बट मेरे मन में सवाल ये आया कि जैसे बेबी प्लानिंग करते हैं लोग प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं और लोग सोचते हैं एक बच्चा होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, लड़की होगी तो उसका नाम ये रखेंगे, अगर ट्विंस हो गए बाई चांस तो उनका नाम ये रख देंगे. बट इनके तो 9 बच्चे हुए और सोचो कैसे इन्होंने नाम रखे होंगे उन सबके. एंड उससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात जो मेरे मन में बार बार आ रही है वो ये है कि ये लोग कैसे इनका पालन पोषण कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ऐसा सोचना ज़रूरी भी है. क्योंकि देखो काफ़ी बार जब सोचने बैठते ना तो ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप ने या फिर हमारे मम्मी पापा से भी ऊपर हमारे दादा दादी ने इतने सारे बच्चे पाले, फिर उसके बाद हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पाला, अब हम कैसे आगे पालन पोषण करेंगे, क्योंकि स्कूल की फीस भी तो महंगी हो गई है कि नहीं. तो आप लोग बताइए आप लोगों के मन में कौन कौन से सवाल आते हैं. नंबर है जी 9654896896. फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना जो कि आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा.

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू फोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अब मैं जिस फिल्म स्टार की बात करने जा रहा हूँ ना, मैं एक हिंट देता हूँ आप लोगों को। वैसे आप नाम बता दूंगा, बट स्टिल हिंट ले लीजिए आप लोग। बॉडीगार्ड, पता लगा आप लोगों को कौन है? नहीं पता लगा, चलिए मैं बात करता हूँ। भाईजान, अब तो पता लग गया होगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात करना चाहता हूँ सलमान खान के बारे में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। भाईजान मीन सलमान खान, यू वोंट बिलीव 60 इयर्स के हो गए हैं ये, और अभी रिसेंटली एक जगह स्पॉट किए गए हैं जहां पैप्स इनके पीछे घूम रहे थे। पैप्स मींस पापाराजी, जो बार बार फोटो खींचते ना, हमेशा सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे घूम के फोटोज खींचते हैं, तो सेलिब्रिटीज इनके पीछे पीछे घूम रहे थे और ये हॉस्पिटल जा रहे थे, तो वहां पर आ गया भाईजान को गुस्सा। और फिर भाईजान क्या बोल पड़े, क्या ही बोलेंगे गुस्से में इंसान क्या बोलता है, वही मीठे शब्द। नहीं, इन्होंने बोला देखो ऐसा है, पागल हो गए हो क्या? और फिर उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा कि 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना अभी भी नहीं भूला, जेल में डलवाओगे क्या मुझे? तो इन्होंने सिंपल सा बोला कि देखो मैं दुख के समय में अगर कहीं जा रहा हूँ और अगर इससे कोई पैसा कमाना चाहता है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये रियलिटी भी है, हम लोगों को लगता है कि फिल्म स्टार्स की लाइफ बहुत ही अमेजिंग होगी, ग्लैमरस दिखती है बाहर से, मगर अंदर से सोचिए कितना ज़्यादा टेंशन रहती होगी उन लोगों को, क्योंकि हमेशा घर से बाहर जैसे ही निकले तो लोग घेर लेते हैं, लोग कहीं पर भी अकेले नहीं जाने देते। सुनने में अच्छा लगता है बट इतना अच्छा होता नहीं है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए आप सभी के लिए ये गाना सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में, साथ में आते हुए असलम, दिलजीत दोसांझ। मतलब सारे के सारे AI कवर्ड सॉन्ग है बट गाना बहुत ही अमेजिंग है। सुनिए गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कौन मैं रात न सुननी बीटे मेरे पर लीड कौन आई एम जीओडी आना करे मेरा पीक कौन सप्लेंडर पे बैठ जगोरी मेरे दर जीप कौन है।

बहुत तो गई गर्मी, मुझको सर्दी चाहिए। टोटस है ये गाना और इसी गाने के साथ स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंड आप सभी के साथ। गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो गई है। मौसम विभाग ने कर दिया है येलो अलर्ट बिल्कुल जारी और उन्होंने कह दिया देखो ऐसा है अब तो ऐसे ही चलने वाला है कुछ दिन तक, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल अच्छे से बाहर अगर जा रहे हैं तो पैक होके जाइए, हल्के कपड़े से पैक होना। ऐसा नहीं कि जैकेट पहन रहे हो स्वेटर पहन रहे हो, ना ना ना ना ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। कुछ लोग करते थे, वो मेरे दोस्त हैं। चलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो सर के ढक के निकलिए, मतलब सर को ढक के निकलिए। टोपी पहन सकते हैं आप लोग, कपड़ा बांध सकते हो गमछा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि आपको लेने हैं गर्मी में। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। हफ्ते का वो दिन है आज जब हम लोगों को लगता है कि बस 2 दिन ही तो और ऑफिस आना है, और फिर किसी को लगता है अरे यार 2 दिन और ऑफिस जाना है। कोई दिक्कत नहीं, चले जाइएगा ऑफिस भी। और चलिए अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चला अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अभी अभी आपने सुना है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, प्यार आता है। और सच बताऊं तो प्यार की सबसे प्यारी बात यही है जो बिना बुलाए आ ही जाता है, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की याद में, और कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में बस आ जाता है। रेडियो महारानी से मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और शो ले आई हूँ आपके लिए इश्क बाजियां। और ये शो उन दिलों के लिए है जिनमें अब भी मोहब्बत की गूंज बाकी है। और आज का जो ये पहला आर है वो स्पेशल है इश्क शायराना, जहाँ मैं बात करती हूँ उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को, जुदाई को और रिश्तों की उलझनों को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जिनकी शायरी मोहब्बत में भी है और हकीकत में भी, वो अल्फाज जो आज भी उतने ही सच्चे लगते हैं जितने सालों पहले लिखे गए थे। और सोचिए ये बातें आज की लाइफ में कितनी जुड़ी हुई हैं। हमारी जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना, दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है, इंस्टा पर ऑनलाइन दिखते हैं, पर दिल की बात टाइप करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर शायर हमारी मदद करते हैं क्योंकि वो वही सब कह जाते हैं जो हम महसूस करते हैं। और आज की रात मैं आपको लेके चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जहाँ मोहब्बत भी है, तड़प भी है और हकीकत भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने से जो अपने शब्दों में यही कहता है, चाहे हालात जैसे भी हो, जब दिल किसी पे आ जाता है तो बस एक ही एहसास।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम फोकस ज्यादा रखो।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कभी नोटिस किया है, आजकल के रिश्तों में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, जल्दी प्यार, जल्दी टूटना, जल्दी आगे बढ़ जाना, लेकिन दिल वो आज भी पुराने जमाने की तरह स्लो है। उसको आज भी वही दर्द, वही मोहब्बत उतनी ही गहराई से महसूस होती है, और जब दिल बोलना चाहता है तो अल्फाज ढूंढ नहीं पाता। तभी तो हमें शायर चाहिए होते हैं, जो हमारे दिल की बात हमारी जबान से पहले कह जाते हैं। और आज इश्क शायराना में आप सुनने वाले हैं फैज अहमद फैज को। फैज की शायरी मोहब्बत भी है और हकीकत भी। एक तरफ वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सोचो ये लाइन आज के टाइम में कितनी रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल हम सबके पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाली लाइफ, इन सब के बीच प्यार अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल तो चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन जिंदगी बदल चुकी होती है। और फिर फैज हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं, गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मतलब हाँ, दर्द है, हकीकत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी जरूरी है, क्योंकि वही तो है हमारी ड्राई जिंदगी को फिर से रंग भरने के लिए। तो दोस्तों, आज अगर आप किसी रिश्ते में हो या किसी से दूर हो चुके हो, बस इतना याद रखना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। कभी कभी मोहब्बत वो यादें होती हैं जो आपकी थकी हुई शाम को मुस्कुराहट दे जाती हैं। और यही तो है असली इश्क शायराना, दिल की बात शायर के अल्फाज और हमारी जिंदगी का कनेक्शन। और अब यहाँ पर सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गाना। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।
0: बाय।

गाना है फिल्म परम सुंदरी से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सुकून का होता है। जब दिन भर की भागदौड़ से घर पर लौटते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिन भर की जो थकान है वो सब दूर भाग जाती है। और पता है, मेरे साथ भी यही है। कभी कभी इस टाइम की आरजे होने का अच्छा हिस्सा यही लगता है कि इस वक्त आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर बस दिल की बातें कर रहे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली टेंशन्स, सबको पीछे छोड़कर ये कुछ पल सिर्फ आपके और मेरे होते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन पलों में हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ज्यादातर वही ना जिसके बिना अधूरे लगते हैं, यानी मोहब्बत। लेकिन फैज कहते हैं मोहब्बत ही जिंदगी का सब कुछ नहीं है। चलिए उनके शेर से आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आजकल हम सोचते हैं कि प्यार नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ, दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती है। और फैज यही हमें याद दिलाते हैं कि प्यार जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहब्बत आपके लिए सब कुछ है तो जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। जिंदगी की किताब में मोहब्बत बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। और यही है इश्क शायराना, जहाँ शायर हमें मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी का सच भी सिखाते हैं। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वैसे ही आशिकी कई बार बगावत भी कर जाती है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और बहुत ही खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना। देखिए, मोहब्बत पर बात हो चुकी है, अब बात करेंगे कुछ यादों पर, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब यादें शुरू हो जाती हैं, किसी की भी यादें। दिन भर की आवाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जैसे कहीं गायब हो जाते हैं और तभी दिल में वो पुरानी सी यादें दस्तक दे जाती हैं। कभी किसी की मुस्कान की और कभी किसी की नजर की, ऐसे ही पलों को अल्फाज दिए फैज ने। इन्होंने कहा है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानों में चुपके से बाहर आई, जैसे सहमी हुई रूठी हुई सहर आए, जैसे वीरानों में हल्के से हवा आ जाए। क्या कमाल का तस्वीर है। यादों को उन्होंने बहार, सुबह और हवा से कंपेयर किया है, मतलब कोई शख्स अगर याद भी आ जाए तो दिल की वीरानी भी रंगों से भर उठती है। आज की लाइफ में ये एहसास उतना ही सच है। कितनी बार होता है ना, दिन भर सब कुछ ठीक चलता है लेकिन रात को अचानक किसी की याद आकर सब कुछ बदल देती है, जैसे दिल थकान भूलकर फिर से मुस्कुरा उठता है। फैज हमें यही सिखाते हैं कि मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू यही है कि वो दूर रहकर भी, याद बनकर भी हमारी जिंदगी में रौनक भर सकता है। तो दोस्तों, आज अगर रात आपको किसी की याद आ रही है तो बस मुस्कुराकर उसे दिल में जगा दीजिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होकर ही नहीं, कभी कभी बस एक याद बनकर भी बहुत गहरी हो जाती है। और यही है इश्क शायराना। वक्त है गाने

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सोनू निगम की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और फैज की बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं, इनकी कुछ ऐसी शायरी, इनके कुछ ऐसे शेर। और अब एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दिल भरा होता है, लेकिन जब वो शख्स सामने आता है तो बस खामोशी रह जाती है, लव्स दिल में ही अटक जाते हैं। इसी खामोशी को अल्फाज दिए फैज ने, और देखिए इनका ये शेर जो है वो कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा कनेक्ट होता है इस सिचुएशन से कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल की तसल्ली दे दी है ना इस शेर ने, मतलब चाहे हालात कितने ही मुश्किल से भरे क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, गम की शाम कितनी ही लंबी क्यों ना लगे आखिर वो खत्म होनी ही है और उस शाम के बाद एक नई सुबह आनी है। और आज की जिंदगी में ये शेर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम सब कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, किसी रिश्ते का टूटना, किसी चीज का प्रेशर, फैमिली की बहुत सारी टेंशन्स, और उस वक्त लगता है कि शायद यही दर्द हमारी पूरी कहानी है। लेकिन फैज हमें याद दिलाते हैं ना ये सिर्फ एक शाम है और ये शाम ढल जाएगी क्योंकि शाम के बाद एक नई सुबह आनी बाकी है। तो यार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा हो ना, एक लंबी सी शाम चल रही हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुबह जरूर आएगी। और यही आपको सिखाता है इश्क शायराना। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन खैर, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहाँ ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहाँ हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोरदा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोरदा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली की।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कसम।
1: रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमा को वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

प्रतिभा सिंह की आवाज में है ये गाना कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है गर बेअसर तो क्या कीजिए, और नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं पर तुम ही पे जाके जो ठहरे नजर तो क्या कीजिए। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और आपने वो गाना सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो जो वादे किए हैं ना किसी से वो निभाने तो पड़ेंगे। और कई लोगों को वादों पर एतबार नहीं होता, जानते हैं ये टूट सकते हैं, फिर भी प्यार में डूबे लोग वादा करने में कोई परहेज नहीं करते, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो या तो रिश्तों को एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से वादे हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। वैसे एक वादे के टूटने से होती है रिश्ता टूटने की शुरुआत, और ये स्टडी भी बताती है कि इंसान दिन में 15,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इस दौरान लौट कर आने, फिर मिलने, जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इन 15,000 शब्दों में से सिर्फ कुछ 100 शब्द लोगों को अगले हफ्ते तक जोड़े रखते हैं। ये बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल्दो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है इन वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि यार ये वादे टूट ना जाए। तो आज इन्हीं वादों पर बातें हो रही हैं, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
2: क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

और इसी 90s मैशअप के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्यार में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाना कितना जरूरी है यार। यूं तो लोग रिश्ते में चांद तारे तोड़ लाने और मौसम का रुख बदलने तक की बातें कर देते हैं, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है वो भी जानता है इनको, क्या ऐसा सिर्फ बोलने भर की बातें हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा जब उन वादों को तोड़ दिया जाए जिसे पूरा करना पॉसिबल है, और सामने वाला आपसे एक होप लगाए बैठा है कि आप इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। वैसे अगर एक भी वादा टूटता है ना तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वादे के टूटने के बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हर बात को एक अलग नजर से देखने लगता है कि यार एक प्रॉमिस तो पूरा किया नहीं गया और प्यार निभाएंगे, और आपको ये जो वादे होते हैं ना वो बड़बोलापन बना देते हैं। तो इसीलिए आपको सोच समझ कर वादे करने चाहिए। फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्रॉमिसेस को लेकर। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है वादा कर लिया तो क्या बड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाले की दिमाग में ये बातें बस जाती हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला इसे सच मान बैठता है और सामने वाले से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने बताया है कि वादे क्यों टूटते हैं, और इस पर इन्होंने एक बेस्ट रिसर्च स्पीच भी दी है। इसमें इन्होंने वादे टूटने का बहुत मेन रीजन बताया है कि भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी से आप वादा करें तो भावनाओं में बहकर ना करें, वो वादा करें जो एग्जैक्टली आप पूरा कर पाए, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और मैं आज दिल दिया गला में आपसे यही कहूंगी कि वादे कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो बचकाने वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर पाए। अब वो वादे कीजिए जिसे आप पूरा कर पाए, और सामने वाला अगर आपसे एक्सपेक्ट भी करे तो आप वक्त के साथ अपने वादों पर खरे उतर पाए, वरना लोग आपको ये कह देंगे कि आप अपनी बातों पर नहीं रहते, अपनी बातों को कहकर मुकर जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी मेरे चलने का वक्त है, मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर?
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, है

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले, सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कलर्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।

हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: आवश्यक सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: शादी ना बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया इसलिए।
0: अच्छा, आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: ओ जी देखिए तो क्या हसीन रात

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई पहले जरा मुस्कुराई
1: पहले जरा मुस्कुराई।
2: ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बचना है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े
1: मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े।

0: मत सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: चल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: पीछे। तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशा, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान की रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक। और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं, बहुतों को प्यार कर